अभी बस यामें सुस्वाब तंपिनाए तमोई मोना मकिनांगाओ बस कदा जान ती किद तदाओ अबासी बा।